0: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी सकाळचे 6 वाजत आहेत. ठीक 6 वाजता हिंदी समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत काही क्षणातच.
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज. भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया. प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया. EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी. इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी. इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं. बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है. उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही.
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. फूड फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है. इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है. पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है. आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है.
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं. इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095. डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है. भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पून को सौंप दिया गया है. सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा. इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है. कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे. विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की. मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है. शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया. भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है.

0: रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम मंगल प्रभात। सुरुवातीला देवी स्तोत्र।

0: समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे दो और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September.

0: 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. X par at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर एट AIR News Hindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
4: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही

0: मशहूर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 ऑन बोर्ड GSLV-F17 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV...
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।

सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404 IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV...
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज आधा प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एअर या ऍप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचं 1:05 झालेली आहेत। आता चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार। आज आहे गोकुळ अष्टमी। सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा श्रोते हो। कृष्ण म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो मोर पिसांचा मुकुट, हातातली बासरी, ओठावरचं गोड हसू आणि त्या हसण्यात दडलेलं एक विलक्षण गूढ। पण आज कृष्णाकडे देव म्हणून नाही तर एका वेगळ्या नात्याने आपण बघूया। म्हणजे कृष्ण म्हणजे सखा, आपला मित्र, आपला सोबती, आपल्याशी मनमोकळं करता येईल असा कुणीतरी। कारण देवासमोर आपण हात जोडतो पण सख्यासमोर आपलं मन आपण मोकळं करतो, मन उघडतो।
2: आ बदले

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करूबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
2: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
3: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
2: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदाम्बी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, प्रधानमंत्री।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्स ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआर या ॲपसहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता नादब्रह्म कार्यक्रमात आज पंडित शंकर भट्टाचार्य यांचं सरोदवादन आपल्याला ऐकवत आहोत। सरोदवर त्यांनी वाजवलेला राग वृंदावनी सरंग मध्यलय गत जप तालात आहे। द्रुतगत 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबल्याची साथ संदेश पोपटकर यांनी केलेली आहे। ऐकूया पंडित शंकर भट्टाचार्य यांनी सरोदवर वाजवलेला राग वृंदावनी सारंग।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और

0: उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार

0: के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष V. नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
6: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी।

0: अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
1: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और छप्पन भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. 3-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervor across the country. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. The 3-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today held a series of bilateral meetings with heads

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 300

169 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।